0: West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हमीम अजरवी और तुसा सुन रहे हो लिंक एफएम.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have local to support you and amazing feedback, Azir Solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114-308-2727. Azir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है. वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं. क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं. 0330571009 पर कॉल करें. क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें.
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects

0: UK. एक्सीडेंट हो गया रफा जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइन गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया तो द क्लेम टीम तुम खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम गिव दोनवाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 0330057109 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
1: Bringing communities

0: ये तो तड़पता ही रहा है सदा, तू सबका ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

0: interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: सुनिए सुनिए सुनिए, पर्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कांटेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब

0: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusa sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Third Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power, immigration, please call. Mazeer Solicitors is trading by Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions.

0: UK. एक्सीडेंट हो गया रफा रफा। जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो, फटाफट द क्लाइम टीम की फोन करो। अगर तुम टैक्सी चलाने हो, तुम प्राइवेट हाथ चलाने हो, या फिर कोई क्लाइंट गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है, तो द क्लाइम टीम तुम्हारी खिदमत विच हाजिर है। जेड़े शफील्ड दादरम गिरदोन वाले इलाकों में टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम की मुहैया करने, द क्लाइम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने। उन्होंने फोन नंबर है 03300571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम।
1: Bringing community.

0: तड़पता ही रहा है सदा, तू सबका ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

लीजिए जनाब, बताता चलूं। अक्सर क्या होता है कि सुनाते हैं आपको मजीद भी।

0: 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब

यकीनन आपको मजा। बड़ी खूबसूरत और बड़ा खूबसूरत जो है वो अंदाज में एक आखारी का

0: एक्सीडेंट हो गया रपा
1: जी होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई किराए की गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है द क्लेम टीम तुम्हारी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम गिरदोनवाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम्हें मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
2: Bringing community.

0: जो तू तड़पता ही रहा है सदा, तू सबका ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

0: interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: सुनिए सुनिए सुनिए, पॉल बेकर ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगा

0: 98.7. Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
1: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
2: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब

0: West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
2: Mizzia Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Thurrock Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential wills and property. Please call. Mizzia Solicitors is trained by Infinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या claimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board

0: खेल
1: एक्सीडेंट हो गया
2: जी होगी एक्सीडेंट फिक्र ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइन गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है द क्लेम टीम तुसानी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम गिरदोनवाल इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसाकी मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
3: Bringing to me.

0: तड़पता ही रहा है सदा, तू सबका ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

0: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
1: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर, कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है, तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है। ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
2: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है, ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।

हर धड़कन की आवाज है लिंक FM, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM, दिल से आपके साथ।

0: मंजिल जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम शेफील्ड।
2: आप सुन रहे हैं लिंक एफएम।
3: नामी सलामा अजीमुशान खुशबुए मदीना महफल शेफील्ड इस साल इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल के दिन मनाई जाएगी, जिसमें 5 उमरा के टिकट खुश नसीबों को दिए जाएंगे। डेट नोट फरमाएं 25 अगस्त ट्यूसडे शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। महफल के आखिर पर लंगर शरीफ का वसी इंतजाम होगा। इस महफल पाक में सादात कराम, उलमाए कराम और मारूफ सनाखां अपनी हाजिरी पेश फरमाएंगे। हम आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि इस महफल में शिरकत फरमाकर सवाब-ए-दायरान हासिल फरमाएं।
2: लिंक एफएम

0: thing to
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusi sun rahe ho Link FM.
3: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have local and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 2727. Mazir Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ।
1: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: एक्सीडेंट हो गया रफा
1: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हाथ चलाने हो या फिर कोई किराए की गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है द क्लेम टीम तुम्हारी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम गिरदोनवाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम्हें किमाया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम

0: तड़पता ही रहा है सदा, तू सबका ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब

0: की आवाज है लिंक FM, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक। सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM। दिल से आपके साथ
1: लिंक FM शेफील्ड।

0: Dr. Manfred Andaz, नगरन प्रोग लिंक एफएम, हर लम्हा हर जगह आपके साथ साथ।
1: नामी सलाना अजीम शान खुशबुए मदीना महफल शेफील्ड इस साल इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल के दिन मनाई जाएगी, जिसमें 5 उमरा के टिकट खुश नसीबों को दिए जाएंगे। देर नोट फरमाएं, 25 अगस्त ट्यूसडे शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक महफल के आखिर पर लंगर शरीफ का वसी इंतजाम होगा। इस महफल पाक में सादात कराम, उलमाए कराम और मारूफ सनाखां अपनी हाजिरी पेश फरमाएंगे। हम आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि इस महफल में शिरकत फरमाकर सवाब दायरान हासिल फरमाएं।

0: आपको ये भी
1: जी कबूल है
2: जी कबूल है
0: माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक हो मुबारक
1: कैसे जाया जाएगा मुझे मैं छुट्टी लेके जल्दी वापस आऊंगा मैं इंतजार करूंगी

0: listening to
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
3: Mazia Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Thurrock Park. We provide quality, dedicated legal services to employees, residential rules and pro. Please call. Mazia Solicitors is trained in 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board

0: रखें।
1: एक्सीडेंट हो गया
2: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो, फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो। अगर तुम टैक्सी चलाने हो, तुम प्राइवेट हर चलाने हो, या फिर कोई किराए की गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है, द क्लेम टीम तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। जेडे शफील्ड दादरम गिर दोनवाले इलाकों में टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम्हें मुहैया करने। द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने। उन्होंने फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम।

0: ये तड़पता ही रहा है सदा, तू सबका ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

0: future.
1: खुशबू महफल शेफील्ड इस साल इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल के दिन मनाई जाएगी, जिसमें 5 उमरा के टिकट खुश नसीबों को दिए जाएंगे। डेट नोट फरमाएं 25 अगस्त ट्यूसडे शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। महफल के आखिर पर लंगर शरीफ का वसी इंतजाम होगा। इस महफल पाक में सादात कराम, उलमाए कराम और मारूफ सनाखां अपनी हाजिरी पेश फरमाएंगे। हम आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि इस महफल में शिरकत फरमा कर सवाब दायरान हासिल फरमाएं।
2: कुछ चेहरे चांद जैसे होते हैं, जिन्हें देखकर दिल हर रोज नई दुआ मांगता है,
3: और कुछ मुस्कानें पूरी जिंदगी का सुकून बन जाती है। जब पहली बार तुम्हें देखा तो लगा जैसे रात ने चांद को जमीन पर उतार दिया हो। उस पल से मेरी हर सुबह और हर रात बस तुम्हारे नाम हो गई।

0: Lake FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब

0: other thing to
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
3: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have local and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 2727. Mazir Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571-0009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions.

If you just tune in, this is Link FM 96.7 FM. Studio number is 0114-261-8181 and WhatsApp 0793984-9339. I hope you had a great weekend. I'm not sure if you missed a drive time show on the weekend. अब भाई आजकल कायम किसके पास टाइम है ड्राइव टाइम सुनने का, ये सितंबर के बाद देखना आप, यू नो फ्रॉम द सितंबर, जब ये सारी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी ना, उसके बाद जब लाइफ नॉर्मल हो जाएगी आप सबकी, घर बाहर में टेंशन होगी, भागम भाग होगी जिंदगी में, तब आपको ड्राइव टाइम की याद जरूर आएगी और उसके उस वक्त आप यकीन है ना हमें ज्वाइन करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि मैं अब आपको ये भी नहीं कहता कॉल करें या टेक्स्ट करें, क्योंकि आई नो, तो उम्मीद करते हैं कि आपका हफ्ता अच्छा गुजरा होगा और साथ में ये दुआ भी करते हैं कि ये पूरा हफ्ता भी आपका अच्छा गुजरे। It's going to be a bank holiday weekend, so I hope you have some plans. If not, then maybe you should make a plan. If you can afford a lastminute.com plan.

Because if you haven't made any plan, everything is going to be very expensive. भाई जिंदगी में लोग होते हैं यार, होते हैं जो हर चीज प्लान करके करते हैं, हर चीज उनकी जिंदगी के सारे फैसले पक्की प्लानिंग करके कर रहे होते हैं। आपको पता नहीं होता कि उनकी क्या प्लानिंग है, लेकिन उनकी ये प्लानिंग होती है सिक्योर किया जाए। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता और मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि आप अब प्लान करें अपने बैंक हॉलिडे के लिए, क्योंकि आपने पहले से प्लान किया होगा। पहले से प्लान नहीं करते लोग, मैंने ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, मैंने इस बंदे से शादी करनी है, इससे नहीं करनी है, फला जगह जॉब करनी है या फला कारोबार शुरू करना है, फिर इतने साल में मेरे बैंक में इतने पैसे होने चाहिए, फिर मैंने फला स्ट्रीट या फला एरियाज में घर लेना है।

अल्लाह का शुक्र होता है उनके ऊपर बहुत। आई एम नॉट श्योर कि ज्यादा माल होना अल्लाह का शुक्र है या नहीं है, आई थिंक ये भी एक इम्तिहान है, कम होना भी एक इम्तिहान है। अल्लाह तबारक व तआला एक और तरीके से आपको टेस्ट और मुझे टेस्ट करता है, ज़्यादा देकर भी हमें वो टेस्ट कर रहा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अगर उन्होंने बहुत हमें दिया है, वैसे यू नो अगर आप अपने आप में देखें तो और अपने अराउंड नज़र दौड़ाएँ तो आपको ये महसूस होगा, आपको भी और मुझे भी ये महसूस होता है कि अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है, मुझे बहुत नवाजा है, शायद मैं इसके काबिल नहीं था और मे बी दैट इज़ माई टेस्ट। और अगर किसी को नहीं दिया तो वो उसका टेस्ट है। लेकिन एक चीज़ है,

लेकिन एक प्लान जो होता है ना हमारे रब का होता है और असल प्लान वो प्लान होता है। हाँ ये जरूर है कि अगर आपने सारी प्लानिंग खुद की हो अपनी जिंदगी के बारे में और उसके बाद अच्छा हो या बुरा हो आपको उसकी जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए। ये आप नहीं कह सकते कि यार ये तो मेरे नसीब में था मेरी किस्मत में था। ठीक है जी किस्मत और नसीब भी होता है एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर आप ही सारी ज़िंदगी गलतियां करते रहें या मैं ही करता रहूं, अगर मैं तो अपने नसीब या अपनी किस्मत को दोष किसी मामले में नहीं ठहराता। आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारें और उसके बाद कहें कि ये यार ये मेरे नसीब थे या ये मेरी किस्मत थी ना।

0: with Jawad Janjua on Link FM 96.7 FM.
1: कलीम ने भी हमें ज्वाइन किया, अफशान जी ने भी हमें ज्वाइन किया, दोनों कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम।

0: 1729.
1: My ops take you.
2: With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home. For more,
1: just get on. .co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइन गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है ते द क्लेम टीम तुसानी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोन वाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसाकी मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 0330057100009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रोदरम
4: Bringing communities together, broadcasting from the Pakistan.

0: ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा, तू सबका है खुदा। ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.
2: My name is

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम शेफील्ड।
2: Keep listening to

0: interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: सुनिए सुनिए सुनिए, पर्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सदा।

0: Fi amanallah and Allah Hafiz.
1: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले और हर सूर दिल को छो जाए,
2: वही है लिंक एफएम।
1: दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम।

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेकअवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कांटेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्म कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ, लिंक एफएम शेफील्ड।

0: bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan.
1: You're listening to Lincoln. Linking communities, thinking.
2: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक।

0: की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम शेफील्ड।
2: आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7।
3: You can

0: One-stop food hub with an excellent array of succulent foods such as flame grilled starters, Asian style pizzas to your table at your home. For more,
1: just get home. .co.uk
2: एक्सीडेंट हो गया रफा
3: जी होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइम गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है द क्लेम टीम तो सनी खिदमत विच हाजिर है जेडे शफील्ड दादरम गिव दो नवाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
4: Bringing communities together, broadcasting from the Pakistan.

0: وصبته
1: ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा, तू सबका है खुदा। ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
2: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम। दिल से आपके साथ

की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ।

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब

0: आपको ये गीता कबूल है?
1: जी कबूल है।
2: जी कबूल है।
3: माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मुबारक।
1: अब कैसे जाया जाएगा मुझसे? मैं छुट्टी लेके जल्दी वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करोगी?

0: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07 809 568233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
1: लो जी सुनो जी आई गए खान कैटरिंग आले खान कैटरिंग राधरम जिन्होंने मजेदार खानिया ना कोई जवाब है नहीं एक बारी अजमाई के तको शादी ब्याह सालगिरह मानिया मेहंदी और दिगर तकरीबात आस्ते एक महंगाई ने दौर विच सस्ता ता मजेदार खाना आर्डर पर बनवाई सकने हो एक और भी गल बुझो खान कैटरिंग राधरम वाले पूरे साउथ यॉर्कशायर विच कैटरिंग नी डिलीवरी भी करने आर्डर निका होया या बड़ा फोन करो या व्हाट्सएप पर रابطہ करो 07 737 547
2: या 07 784 850 934.
3: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11 a.m. till 2 p.m. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074 439 54378. That's 074 439 54378.
4: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
5: लिंक एफएम शेफील्ड 96.7 लिंक एफएम.
6: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
7: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है, जहां मैं हूं, वहीं हो तुम, क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं, तुम्हारी बन जाती है, ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी?

0: कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे, मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं।

धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: 1729.
1: NIOPS Take
2: Your One Stop Food Hub. With an excellent array of succulent foods such as flame grilled starters, Asian style pizzas to your table at your home.
1: NIOPS.
2: For more,
1: just get on. .co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइम की गड्डी ना एक्सीडेंट होई गया है तो द क्लेम टीम तुम की खिदमत विच हाजिर है जेडे शफील्ड दादरम गिर दोनवाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 0330057100009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
4: Bringing communities together, broadcasting from the Pakistan.

0: ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा, तू सबका है खुदा। ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

0: interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: सुनिए सुनिए सुनिए, पर्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब

0: With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home. For more,
1: just get home. .co.uk
2: एक्सीडेंट हो गया रफा
3: जी होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइम गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है द क्लेम टीम तुम की खिदमत विच हाजिर है जेडे शफील्ड दादरम गिरदोन वाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 0330057100009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
4: Bringing communities together, broadcasting from the Pakistan.

0: ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा, तू सबका है खुदा। ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM. My

0: सबको ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा, तू सबका है खुदा। ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

0: मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी, मेरी इकलौती बेटी, मेरी आरती मुझसे बगावत करेगी, मुझे यूं जलील करेगी।
1: वो भी टैक्सी ड्राइवर एक टूरिस्ट गाइड के साथ?
0: नहीं, ये शादी कभी नहीं हो सकती। अगर वो जिद्दी है तो मैं उसका बाप हूं। बाप मैं दखल कर दूंगा अपनी जायदाद से। एक कौड़ी नहीं दूंगा उसे, एक कौड़ी नहीं दूंगा।

0: नहीं, मैं इन कागजात में दस्तखत नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी को बेदखल कभी नहीं कर सकता, ना अपनी जायदाद से ना अपने दिल से।
1: लेकिन सुनिए, आपने कागजात अपने हाथों से तैयार किए हैं।
0: वो मेरे दिल का टुकड़ा है शालू, मेरे दिल का टुकड़ा, मैं उसे अलग कैसे कर सकता हूँ।
1: लेकिन उसने आपके
0: उसने चाहे कुछ भी किया हो, वो औलाद है और मैं बाप हूँ। वो मुझे बड़ी से बड़ी सजा दे सकती है और मैं उसे छोटी सी सजा भी नहीं दे सकता। वो मुझे भूल जाए ना, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मैं जा रहा हूँ उससे मिलने, उसके नए घर में।
1: मैं भी चलूंगी।
0: तुम
1: सुनिए, आखिर मैं भी उसकी माँ हूँ, तो तेरी हुई तो क्या हुआ, मेरा दिल उसे मिलने को नहीं तड़पता।
0: ठीक है चलो।
1: भाई ये क्या हो गया?
0: रिलैक्स रिलैक्स पहना
1: भाई।
0: कोई बात नहीं बहना, कोई बात नहीं, तुम भी तो माँ हो, सौतेली ही सही, तुम्हारा भी तो मन उसको मिलने के लिए तड़प रहा है ना। जाओ मिलो, देखो समझो।

0: आरती ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला आरती
1: बाय सी यू सून टेक केयर ओके